0: बेस्टा विजन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पेश कर देने सरब सांची कुर्बानी।
1: सलोक सर्व कला भरपूर प्रभ बिरथा जानन हार जाके

말씀해 주여. 이 राग आप श्रवण कर रहे हो हूं गौड़ी चेती गुरुग्रंथ साहिब महाराज का राग है और कबीर साहब ने भी इस राग विच ही कृपा की है। बड़े प्यार नाल गौड़ी चेती गुरुग्रंथ साहिब का राग है, बड़े प्यार नाल सुनेंगे और जो इसका ताल है वह 15 मात्रा है।

ते चढ़ी है। और इस मकान की छत उत्ते गोहा पत्थना शुरू किया। इस मन विच खुश है मेरा बच्चा हुण खेडण जोगा हो गया। इन्हें एदे हाथ विच एक छोटी जी गेंद दे दित्ती। बच्चा इस गेंद नाल खेडदा पिया है। मां इस दे हत्थों गेंद लेंदी है, दूर वगा के मारदी है। बच्चा भज के जांदा, गेंद चुक के लिआउंदा, फिर मां नूं आके परेशान करदा। मां फिर उस गेंद नूं लैके दूर वगांदी है। बच्चा फिर भज के जांदा है। इस प्रकार नाले ए मां अपना काम पई करदी है, नाले अपने बच्चे नूं खेडदा वेख के बड़ी खुश हो रही है, बहुत प्रसन्न हो रही है। मन विच उमंग है, मन विच खुशी है, मेरा बच्चा हुण खेडण जोगा हो गया। इसे प्रकार कुछ समा बीतिया। इस वारी बच्चे ने गेंद लिया के फिर मां नूं दित्ती। मां ने बेध्याने होके उसे तरह फिर गेंद वगा के मारी, दूर सुट्टी। इस वारी ए गेंद जेड़ी सी बनेरी नाल टकरा के थल्ले जा पई। मां अपने कम विच मशगूल है। इधर ए बच्चा पहले वांग ही भज्जा उस गेंद।

कट कट के अंतर की जान तू प्रभ मेरा अंतर जानी जान कट कट के अंतर की जान तू भले बुरे

बोलो भी ना, कुछ कहो भी ना, कि परमात्मा सुन लेंदा है, परमात्मा जान लेंदा है। अनबोध ही जानो हाल, सब कुछ जानता है, वो वेख रहे हैं, सुन रहे हैं कि आज कैसी मंग आई। परमात्मा से ख्याल ही रखता है कि सेवक मंग करे तो मैं पूरी करा, कदों जीव मंगे तो मैं उसनु देव। असी आने ही मंगने वास्ते, इस डर से डिगने ही ता वा कि सतगुरु अज आ वस्तु चाहिए दे दे। सतगुरु एक खिन भी नहीं लाता, सेवक चोली विच दात पा देंदे। किन्ना दी जिन्हां नूं यकीन है, भरोसा है, अकीदा है, असी भरोसा करी।

0: कसम हमार ता मेरा अंतर जामी जान।
1: मेरा खसम कैसा है, मेरा मालिक कैसा है, अंतर्जामी करने हारा, सब कुछ कर्म कराने वाला उपापी। अंतर्जामी करने हारा सोई खसम हमारा, जिदा एहो जिहा खसम होवे, जिदा सब कुछ कर करा रहा होवे, ते उहदी कोई मंग रह जांदी, कोई इच्छा रह जांदी, कोई भावना रह जांदी नहीं, क्योंकि उहदा मालिक सब कुछ जानता है, सब कुछ आप करन करावन हार है, ते उहनू ते कमी हो ही नहीं सकती। किनू अंत

रस का हर बिन रह नस को इक राती, हर बिन क्यों जीवा मेरी माई, हर बिन रह नस को इक राती, हर बिन क्यों जीवा मेरी माई।

बूंद बेखूना चात्र को क्यों कर तृपतावे। नाद पुरंग के बेदया सन मुख उठतावे। पावन लोभी कुसुम बांस का मिल आप बंधावे। क्यों संत जना हर पीत है देख दर्श अगावे। हर बिन रह न सको एक रात भी गैप पैदा है ना कि परमात्मा मैं ते मर जान जीवित नहीं रह सकता पर सानू ते दिन ही बीत जाते ने महीने लंघ जाते ने साल बद्धी दिन आ जाते ने पर कदी ख्याल ही नहीं किया कदी सोचिया ही नहीं कदी विचार ही नहीं किया कि असी भी ऐसी तरफ पैदा कर ली जिन्ना चिर गुरु दरबार विच ना आईए सानू भी शांति ना मिले ऐसा प्यार होना चाहिए। हर बिन रह न सको एक राती किवें जो अमले जो बिन अमले अमली मर जाई है जो हर बिन

तेग बहादुर साहब कहते हैं, अपने आप को गुणी समझकर कीर्तन न कर, मुझ में गुण है। और मुझे याद है एक बार मैं वैंकूवर बाहर गया तो एक राजी जत्था आया, वो थे रबाबी। अब वो रबाबी लोग जो होते हैं वो तो कहते हैं जब उनका बच्चा रोता है तो वो भी सुर में रोता है। भाई मर्दाने के खानदान से रबाबी लोग, लेकिन इतना गुण परमात्मा ने दिया, लेकिन अहंकार आ गया कि हम लोगों के सिवा कोई गा ही नहीं सकता। सत्य बलवंडे ने भी अहंकार किया था कि हम ना कीर्तन करें तो कोई गुरु नानक को पूछने वाला थोड़ी था। तो वो कहने लगे हमारा कीर्तन उनके बाद में था, तो वो कहने लगे कोई है माई का लाल जो हमारे जैसा कोई शब्द पढ़ सके, जैसा हमने राग गाया कोई गा सके। तो हम पीछे बैठे, मैंने कहा भाई ये कीर्तन है, ये कोई दंगल थोड़ा ही है। एक बार प्यार से बोलिए, ये दंगल नहीं है, यहां कुश्ती नहीं होती। यहां तो जैसे जैसे इंसान में गुण भरते हैं वैसा वैसा इंसान नीचा होता है, निम्रता में आता है। जो यहां भी गुण गाकर अहंकारी हो गए तो फिर निम्रता कहां आएगी, बाहर दंगल में आएगी। यहां तो निम्रता सीखनी है। जितना जितना सेवा की गुरु अंगद देव जी ने, उतनी निम्रता में भरते गए। जैसे जैसे गुरसिखों ने गीत गाए वैसे वैसे निम्रता आती, नीचे होते चले गए।

ने अस्सी फीसदी से फरीद एक गल याद रखना, मां का इंजेक्शन लगा होया बच्चा रब का रूप बन सकता, जे मां ने चंगा इंजेक्शन नहीं लाया तो बच्चा महान पापी ते महान डाकू बनेगा। कई सतगुरु पातशाह साहब श्री गुरु रामदास साहब पातशाह जी ने लिख दिता

शस्त्र प्रमाण तीर, तीर मतलब नेजा, तफंग तीर तफंग बंदूक, बड़ो राम जंगो रिवाल्वर, धड़क धार अणियर धनसबान और उसके तीर जड़े ने अणियर वर्गे होने चाहिए, अणियाले तीर जड़े दूसरे तीर ने ना वह बज जा मुड़के कढ़े जा सकते हैं तो आदि बच सकता है, पर अणियर तीर जड़े ने वह बाहर नहीं आते। जो एक बार अंदर धस जाना जो खिचोगे नाल ही अंदर भी नाल ही लै आऊंगी वोदिया दो कड़िया होंदिया एवं मुड़िया हो एक सीधी होंगी तो दो एवं मुड़िया होंगी सीधी के अंदर चली जाती तो बहर आने लगे दूजिया जड़िया ने फिर कहदिया हम आ जा अकाल पुरख के कोल ही चल रहे हैं। हां जी इसलिए जे मेरिया भैन कोल कित होंगे ना शस्त्र दिल्ली यह हाल नहीं सी होना जोड़ा होया पता की हाल है सरदार साहब होनी शीशगंज साहब दर्शन करने आ रहे उन्होंने सरदार ने पिछे मोटरसाइकिल से बैठे हुए उन्होंने नहीं पता कि अज यह भाड़ा वर्तना है डांग दे के मोटरसाइकिल के तारा च डेग के वारी वारी उन्हें ड्यूटियां लाई हुई से एक ने सरिया मार गया सरदार जी के सिर पर वो थले डिग पे दूसरे ने धार मारी पिस्तौल पेट्रोल की तीसरे ने वो जिद सिगरट पीते होंगे एवं करके वह दाली भी सिखा की चट फूकते थे उन्हें अग लाती सड़ बह गए जी बीबी जी सी वह बेचारे बड़े मायूस घबरा गए भजन की कोशिश पर दुष्टा को कितने भजना है कौन ना तो तीर ना तफंग ना राम जंग ना धड़क तार अणियर ना कबंध कोरड़ा तो कोल की सी जा राती टीवी वेख के आए थे जाके हम जी सी आर वेखना सी ये कोल सी बाकी कुछ नहीं सी गहने पाए से उन्होंने दुष्टा ने एक ने इधरों फड़िया दूसरे इधरों फड़िया कपड़े फाड़ के सड़क के शरेआम बेइज्जतियां कीतियां उन्हां दियां जिन्हां ने गुरु गोबिंद सिंह दे सिंघां ने इन्हां दियां धियां नूं दुष्टां दे कोलों छुड़ा के ते घरीं जा के छड़ के बाइज्जत तौर ते छड़ के ते आउंदे सी उन्हां दुष्टां ने इह नहीं सोचिया भाई इन्हां ने कदी साडे ते उपकार कीते सी ध्यान दे कोई जकारे फिर छड़ लेंगे जरा हुण कर लेंगे यह नहीं सोचा गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह कोल ब्राह्मण तिलक लाया होया जंगू पाया होया ते बहुत रोंदा होया करलाउंदा आया कहिंदा महाराज मैं बच्चा व्याह के लिया रहा सा ते मेरी नूह नूं आ दुष्ट जिहड़े ने मुगल दुंबे खाण वाले पूरा पूरा बकरा खाण वाले वह खो के लै गए। गुरु गोबिंद सिंह साहब एम सिंह सजे से उन्हें आख्या भाई अजीत सिंह जी तुसी उठो अपने साहबजादे नूं कहो उठो नाल दो चार सिंह लै लो इन्हां कोल एड्रैस लै लो और उस देवी नूं हुणे ही आजाद करा के लियाओ और इस पंडित दे घर जाके आप पूरी हिफाजत नाल छड के आओ। उन्हां पंडितां ने अज उन्हां अजीत सिंह दीआं भैणां नूं बाजार दे विच नंगिआं करके साडी अखां दे सामने इन्नी बेइज्जती कीती जो मेरे कोल कई नहीं जांदी। लेकिन मैं कहिंदा कि सिंगो ए पंज शस्त्र रखो धड़क धार अणियर ऐसे तीर रखो बाहर आने लगे नाल आंदरा कमंध कोरड़ा। कमंध कोरड़ा एक ऐसा शस्त्र हुंदा है ये सरिये लैके आउंदे सी ना मारन वह सरिया लैके जदों आवे कमंध कोरड़ा ऐ भुआ के सरिये ते मारीदा वह फिर ऐ वल पा के सरिये नूं काबू कर लैंदा खिच के सरिया अगले का अपने हाथ फड़ लैंदा उहनूं भी हत्थे कर छड्डदा इक्को ही छुट्टी दा बस फिर बोरे सोधिया। इस वास्ते अज तुसी बाबा दीप सिंह साहब शहीद आजम का दीवान मना रहे हो यह तुसी प्रण करके जाओ शस्त्र दे धार नहीं बनना डरना नहीं। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने यह खंडे का अमृत सब सिखाया खंडे का खंडे का अमृत क्यों सिखाया जी कृपान का भी सिखा सकते होर भी किसी चीज खंडे का खंडे शस्त्र संस्कृत मौत कहते हैं मौत खंडा खंडे का अर्थ है मौत ते महाराज ने उन्हें पानी में घोल के सिख नूं प्यार दिता मौत नूं घोल के सिख पी गया सिख गुरु का सिंह मौत नूं घोल के पी गया ते दुष्ट कहिंदा मैं तेनूं वेख लूंगा मार दूंगा ते सिंह आंदा
ਉਹ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਨਕੋਲ ਕੇ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਆਵੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਏਕਲ ਲਾਓ ਤਵੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਮੌਤ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜ ਸ਼ਸਤਰ ਹਾਂਜੀ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ।

बिना शास्त्र के संग नर भेड़ जानो, बिना शास्त्र के संग नर भेड़ जानो। गुरु गोबिंद सिंह का बखवाक है, बिना शस्त्र जे आप केस धरे हुए हो शस्त्र ना हो ते गुरु गोबिंद सिंह कहते सिखो भेड़ बकरी तो वध तुसी कुछ नहीं। इसलिए तुहानू भेड़ बकरियां नहीं मैं बनाया, मैं तुहानू सिंह बनाया शेर। और शेर पता कौन हुंदा? शेर मैदान जंग विच उत्तों छाल मार के आउंदा, छाल मार के। मैं तुहानू दसदा दिल्ली गुरुद्वारा शीशगंज साड़न लई 12,000 की टोली आई, 12,000 की, 4,000 ते आया इधरों फतेहपुरी वालों, ते 4,000 आया लाल किले वालों, ते 4,000 सामने उस स्टेशन वालों आया, ते जेड़े सी ना उन्हां दे खिलाड़े होए बंदूकां लैके वो भज गए, जेड़े दुष्टां दी फौज सी वो भज गई। ते दो चार साढ़े सिख बेचारे लागे कोतवाली, उन्होंने पिस्तौल तो उन्हें रात ही खोले से डंडे इन्होंने हाथ ही फड़ाते से, वह डंडे लैके शीशगंज अंदर आन बड़े। असी डे सा कीर्तन कर बाबे ने साडे राम जपो जी ऐसे ऐसे हां जी, ये राम ही डे सी जपण। उन्हें सिखा आके कहा भाई खालसा जी हुण राम जपना छड़ो ते खंडे खड़काओ, 5 मिंट तुसी होर चुप किते रहे ते तुहानूं इन्हां ने उत्ते ही आण के फड़ के जीवदे सार देना, तीआं तुहाडीआं खिच के लै जाणीआं, आ गोलकां गलकां लुट के गुरु साहब की बेदबी हो जानी। 5 मिंट केवल रहिंदे, जे कुछ कर सकते तो कर लो। यह साडे सिंह साहब बहादुर महाराज नूं नमस्कार बख्शण। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने थापी दित्ती और इन्हां कोल शस्त्र सी जिहड़ा सानूं बाबा महाराज बाबा जरनैल सिंह जी ने कीर्तन च भेटा दित्ता सी। मेरी बेनती सुन लो, मैं गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने थापी दी, इन्होंने अंदर वास किया और शस्त्र कढ़िया, 3-4 सिंह होर सी वह इन्होंने नाल हो गए और इन्होंने छाल मार के बबर शेर जिवें बबर शेर के नजारे उथे मैं वेखे। गुरु गोबिंद सिंह की बाणी मैं पढ़ता हूं, पाप समूह बिलासन को कल की अवतार कहावेंगे, तुरकच्छ तुरंग पछ बटो करकार कृपान कम पावेंगे, निक्षे जिम केर पर्वत ते ता सोग दिवाले पावेंगे, भर भाग पया संभल के हरजू हर मंदिर आवेंगे। ओ मैं सुनिया एक टुक, निक्षे जिम केर पर्वत ते, केर का मतलब बब्बर शेर है, बब्बर शेर जो भुखा हुंदा है वह जो फिर पर्वत तो पवक मार के छाल मार के जो मैदान च आउंदा है उन्होंने फिर जो ना वो पता की लिखे और जो आप पढ़ते हैं गुरु नानक साहब का, हां जी सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंद जग चान होवा, ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोवा। अगे की है सिंह बुक्के, सिंह फिर गजे ते की होया मिर्गावली पन्नी जाए, मिर्गावली पन्नी जाए ना तीर पर हुआ ए बाबे का छाल मार के शीशा के पौड़िया तो तलवार इतने फल ली ते जकारे छड़ते पज पै पज के वह 5-7 पिछे बचारे मेरे वर्गे वह भी मगर मगर भजे हो। जदों उन्हें वेख्या दुष्टा तो ये ते आ गए, तलवार इतने रखी बाबे जरनैल सिंह वाली, वो 4 मार जो सी ना फतेहपुरी वाला भज उठा, 10-15 दंद टुट गए, 5-7 गोडे टुट गए है जी। जब भज उठे वाले ए वेखन वाले भजन तो फिर एक उत्थे खलो गए, इन्हें आख्या गल सुनो असी गुरु गोबिंद सिंह हां, ना असी बीबी मारते हां, ना असी बुढ़े मारते हां, ना असी बच्चे मारते हां, ना असी भजदे मारते, असी भजदे ही मारते, तुसी प्यो दे पुत्तो खड़ो जाओ नहीं तो असी इधर जाने जे आने उन्हों छड़ के लाल किले वाल भज उठे, वह पहला ही अगे भज उठे है जी। 12,000 दुष्ट ए सारे बाबा जी ने, मैं तो कहना महाराज इन्होंने सुना के फिर मैं समाप्ति करनी है, क्योंकि तुम बहुत कुछ सुन रहे हो, 4 दीवान लगा रज गए हो गए, श्रवण करो गुरु गोबिंद।

हन फिर ओ परम परिपूर्ण परमात्मा सदा उना जपन वालियां दे अंग संग है। ए शब्द गुरु अर्जन देव पातशाह दा उचारण कीता होया जिदे विच आप कहंदे हन, हे प्रभु हर का नाम हृदय नित ध्यानी। हे प्रभु मैं तेरा नाम सदा हृदय विच वसावा। हर का नाम हृदय नित ध्यानी, सदा तेरा नाम मैं हृदय विच जपा, मन करके जपा। हर का नाम हृदय नित ध्यानी, संगी साथी सगल तराई। ए नाम जपन दे सदके जिना जिना ने भी मेरे नाल बैठ के तेरा सिमरन कीता है, नाम जपया है और जपन गे, हे प्रभु कृपा करी उना सारिया नु ही अपने नाम दे सदके तार लें। हर का नाम हृदय नित ध्याई, संगी साथी सगल तराई। ते जो नाम जपदे हन गुरु अर्जन देव पातशाह क्यों दिन फिर उना दे अंग संग होंदा है। गुरु गुरु मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा संभाले। जो सिमरनगे परमेश्वर दा नाम, साईं दा नाम, आख्या सदा गुरु उना दे अंग संग है। गुरु मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा संभाले। और जद नाम जपेगा प्राणी, नाम जप के उसकी आत्मा परमेश्वर दे चरणा नाल जदों एक मिक हो जाएगी। बाबा नंद सिंह जी महाराज क्या करदे सन, जदों जीव नाम जपदा है फिर नाम जपन वाला और नामी विच फर्क नहीं रह जांदा। हर हर जन दो एक हैं, बिप विचार किछ नाही, जल ते उपज तरंग जियो, जल ही बिखे समाए। नाम जपन वाली आत्मा परमेश्वर दे एडे नेड़े हो जांदी है कि फिर जदों संसार दे दुख आउंदे हन ता उस आत्मा नूं ओ दुख दुखी नहीं कर सकदे। दुखां विच भी रह के ओ सदा परमात्मा दा शुकराना करदा है, पानी नूं मंदा है ते की कहिंदा है, तेरा किया मीठा लागे। हे प्रभु तू सुख विच रखिया, मैनूं दुख विच रखिया है, ए तेरा ही हुक्म है, तेरा ही पाणा है। तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। गुरु अर्जन देव पातशाह कहंदे ने, मैं तां हे प्रभु सदा तेरे चरणा विच यही आराधना करांगा कि तू मैनूं अपना नाम बख्श, मैं तेरा सिमरन करां, अमृत वेले उठ के तेरी भक्ति करां। और जो परमात्मा दी भगती करदे हन गुरु अर्जन देव पातशाह कहंदे ने, गुरु सदा उन्हां दे अंग संग है।

जिस वेले आख्या गुरु अर्जन देव ने, मियां मीर जितने तन पर पड़ेंगे छाले उतने सिख होंगे सिद्धक वाले, उतने ही सिख सिद्धक वाले होंगे। जे गुरु ने पाना नहीं मनिया तो सिखा ने फिर पाना क्या मनना है। ते फिर जिस वेले चंदू आया अजे भी मन नहीं भरिया तो साहब जी कहन लगे, चंदू साडा मन करदा असी इशनान करिए। तीन दिन हो गए हैं चौकड़ा मार के बैठे हैं, साडे प्यार वाले जेडे नाल आए सन उन्हां नूं बुलाओ। ओ प्यार वाले गुरु अर्जन देव पातशाह नूं प्यार नाल जिस वेले रावी दे किनारे ते लियाए, साहब जी कहन लगे हुण साडा गुरु नानक दे पास जाण दा समा आ गया, असी जपजी साहब पढ़ांगे ते जपजी साहब दा जिस वेले समाप्ति करांगे अपना शरीर अलोप कर लांगे रावी विच, ते तुसी वापस हरिमंदर साहब अमृतसर चले जाणा। ते ए सब नूं आखणा कि गुरु अर्जन जी ने उस अकाल पुरख दे पाणी विच रह के उसके हुक्म विच अपना सिर निभाए। ते जपजी साहब जिस वेले गुरु अर्जन देव जी ने आरंभी, ते जिस वेले जपजी साहब दा भोग पाया, जिनी नाम ते आया गए मुशक्कत काल, नानक दे मुख उजले गेती छट्टी नाल रावी विच अपना शरीर अलोप कर लिया, ते मानो अजे भी रावी दी लहरां विचों ए आवाज गुरु अर्जन देव दी आ

मिला श्रीधर बिनवंत नानक बिनवंत नानक बिनवंत नानक नानक बिनवंत नानक मिला श्रीधर सगल आनंद रस भरी।

मूर्ख प्रति इस तरह बयान करते हैं, अमली अमल न अंबड़े, मच्छी नीर न होए। जिस तरह अमली अमल तो बगैर नहीं जी सकता, नीर कहते ने पानी, मच्छी पानी तो बगैर नहीं जी सकती। इसी तरह

देखा तिहाया क्यों लहे जा सर पीतर पार। कुछ सरोवर आपां बार धरती ते देखते हैं पर एक अमृत दा सरोवर इंसान दे अंदर भी है। तो साहब जी बयान करते हैं जेड़ा ते प्रभु नाल जुड़ जाए ओदी तृष्णा खत्म हो जाती है क्योंकि सब सुखदाता राम है दूसर नाहन कोई। जे सारे सुख नाम विच ने फिर जेड़ा नाम नाल जुड़ जावेगा

पत्नी और पति का रिश्ता बड़ा गूढ़ा संबंध है, पर कई बार इन्हां विच भी प्यार नहीं रहिंदा, क्योंकि जिथे होमे और माया आ जावे उथों प्यार उठ जांदा है। और होमे तां आंदी है जदों इंसान परमेश्वर नूं भुला दे। गुरु नानक साहब गुरु होके गुरु होण दा मन विच माण नहीं, कहंदे ने ऐ परमेश्वर मैं तेरा नौकर हां, तू मैनू नाम दी रास दित्ती है। जिस तरह कोई सेठ अपने नौकर नूं दुकान ते बठावे ते आखे लै तू हुण सौदा वेच, ते साहिब जी कहंदे ने अकाल पुरख मैं भी तेरा नौकर हां, तू मैनू नाम दित्ता है कि ऐ नानक तू मेरा नाम दुनिया विच वंड, भाव मेरा नाम लोकां नूं जपा और मेरे नाल जोड़। ते साहिब जी कह रहे ने अकाल पुरख मैं तेरा नौकर हां, मैं तेरा गुलाम हां, मैं तेरे नाम दा टंडोरा दुनिया नूं दे रहा तां कि लोग सुखी हो सकन, पापां तों झूठ तों ओ बच सकन।

गले लग के मिले तेनू गल ना लगाया ता माता तृप्ता जी एकदम रोना निकल गया ते नाले कहन लगे दिए हुन ते बड़ा चिर हो गया नानक नु देखी है तू आई है कुछ भरोसा होया मन नु कि तेरा वीर मेरा सपुत्र गुरु नानक भी आवेगा। दूसरे पास भाई अजय राव अपने सौरा साहब मेहता कालू जी के पैरों से मत्था टेके मेहता जी ने प्यार दिता ते भाई अजय राम जी भी पूछते ने पिता जी गुरु नानक साहब हाली नहीं आए असी ते इस आस्ते आए हां कि इस वरी जरूर महाराज जी दर्शन होंगे। भाई अजय राम रिश्ते दे विच गुरु नानक साहब दे भाईया लगते ने जिन्हां नूं आपां जीजा भी कहने पर ओ रिश्तेदारी घट और गुरु नानक साहब दे सेवक ज्यादा ने। मेहता कालू जी कहन लगे जय राम तुसी आए हो मैनू भी भरोसा हो रहा है कि मेरा नानक जरूर आवेगा। कुछ समा बीते भाई मनसुख भाई भगीरथ गुरु नानक नाल प्यार करन वाले ए भी आए ता बेबे नानकी जी दे दर्शन कीते। इन्हां ने हाथ जोड़ के आखे है बेबे जी गुरु नानक साहब आए ने ता बेबे नानकी जी कहन लगे हाली आए ते ने पर जद बसंत रुत ने आना होवे ठंडी हवा पहला चलन लग पैंदी बहार ने आना होवे कुंजा दिया डारा पहला उड़न लग पैंदियां ने। जे गुरु नानक दे प्यारे आए ने ते गुरु नानक भी अज जरूर आवेगा। भाई अजय राम गुरु नानक साहब दी याद विच जंगल वाल तुर पए एक दरख्त दे थले बैठे बड़े वैराग दे विच गुरु नानक साहब दा उचारिया होया ए शब्द गाण लग पए अमली अमल ना अंबड़ै मच्छी नीर ना होए जो रते सह अपने तिन भावे सब होए। ऐ पातशाह जिस तरह अमली अमल नाल प्यार कर दे अमल तो बगैर जी नहीं सकदा मच्छी पानी तो बगैर नहीं जी सकती असी भी तेरे नाल इस तरह ही

अपने सपुत्र धन गुरु नानक साहब की याद में मंजी से लंबे पे। एक पासे मेहता कालू जी भरा पे देखते और एक पासे भाई अजय राम और एक पासे रायपुर की तलवंडी का राजा राय बुलार और प्यारे उड़ीकते पे ने कि इस वरी जरूर गुरु नानक साहब की वरे गंढ गुरु नानक साहब की हजूरी में मनावांगे। सूरज डुबण वाला हो गया मेहता कालू जी दरवाजे वाल निगाह टिका के बैठे हैं और बेबे नानकी जी छत ते खड़े होके राह पै थकदे ने। अचानक मेहता कालू जी खुशी नाल झूम उठे और आवाज मारदे ने, तृप्ता आओ देख मेरा नानक आ गया है। कहंदे होया बुढ़ा बाबा कालू उठ के खड़े हो पर सचमुच सामने धन गुरु नानक साहब नाल सेवक मरदाना वेड़े विच दाखिल होए और आंदे आ धन गुरु नानक साहब ने इस सद लाई सत करतार इस सत करतार अंदर जिवें लह गया दिल की गहराई विच। मेहता कालू जी खुशी नाल झूमदे होए अगे वधे धन गुरु नानक साहब अपने पिता दे कोल आए। गुरु होण दा मन विच गुमान ने अपने पिता दे पैरां ते मत्था टेकिया जिस गुरु नानक नूं दुनिया नमस्कारां करदी है ओ धन गुरु नानक साहब अपने पिता दे पैरां ते मत्था टेकदे ने ते पिता ने बाहां तों फड़ के अपने सपुत्र गुरु नानक साहब नूं गल दे नाल लाए कंढ ते हाथ फेरे है अथरू नहीं रुकदे ते कहंदे ने बेटा अज मन नूं ठंड पै गई बड़ा समा हो गया तैनू उड़ीकदे हां तैनू बड़ा मैं झिड़किया तैनू मैं एक वारी चपेड़ा भी मारी है पर बेटा बाद विच जाने है कि तू की है। अचानक ख्याल आया कहन लगे जा बेटा पहला अपनी मां नूं मिल धन गुरु नानक साहब। माता तृप्ता जी दे कोल आए मंजी दे कोल बैठे ते की देखते ने माता जी दी अखां बंद ने हाथां विच चोला है आपे कदे कहंदे ने बेटा नानक ऐ चोला पाला है आपे फिर कह उठदे ने लिया मां मैनू चोला पवा ए वैराग देखिया ते धन गुरु नानक साहब अपनी माता दे हाथ फड़ के कहन लगे मां अखां खोल सचमुच मैं आ गया लिया मां मैनू चोला पवा। अखां खोलियां सपुत्र भी होवे फिर धन गुरु नानक साहब वर्गा कुट के छाती ना लाया अथरू किधे रुकन कहन लगे बेटा हर साल तेरे जन्म दिन ते चोला सी के रखदी है। साहब जी कहन लगे मां लिया फिर मैनू चोला पवा। पलो पली विच एक खबर सारे शहर विच फैल गई संगतां शहर दे वासी और वो प्यारे जिहड़े कीर्तन विच जुड़े सन दर्शन करन वास्ते उमड़ पए ते बेबे नानकी जी हाल भी छत ते खड़े सन कि पहला माता पिता मिल लें।

माता तृप्ता जी, गुरु नानक साहब ने कहन लगे बेटा नानक जाओ हुण अपनी वड्डी भैण नूं मिलो। बड़ी वैराग विच है तन गुरु नानक साहब माता नूं मिल के बेबे नानकी जी नूं मिलन वास्ते उठे तां बेबे नानकी छत तों थले उतरे भज के आए चरणा ते मत्था टेकन वास्ते। पर गुरु नानक साहब ने बाहां फड़ लईआं कहन लगे ना भैण तुसीं वड्डे हो भैणा भरावां दे पैरां ते मत्था टेकन ये नहीं हो सकता।

दुनिया विच जा रहे हैं बंदगी कर सिमरन कर और दुनिया नू स्वर्ग बना सचखंड बना एक कथा कहानियां सुननिया अपने महापुरुषों के जीवन वाल देखना है वो पति भी ने पुत्र भी ने वो भरा भी ने वो सज्जन मित्र भी ने वो गुरु भी ने वो पीर भी ने उन्होंने दुनिया नू प्यार वंडिया ते आओ ये कथा कहानियां सुन के असीं भी अपने मना विच प्यार रखे साडे मन विच प्यार होवेगा अपने घरदियां नू प्यार देंगे लोकां नू प्यार देंगे ते फिर स्वर्ग लभण दी लोड़ नहीं ये दुनिया ही स्वर्ग बन जाएगी।